मेरे काम लग जा, मैं तेरे काम लग जाना। मैनू तू अपना काम दे दे, मेरा काम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो। बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे। जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता, जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा, तू ये कर दे, इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी। संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा, ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया हो। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउण दी, एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है, तू वाहू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, यह हथ बज गए, यह हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने, मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने ची बड़िया भुला ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्योंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराए, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरी लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया, वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा है साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा, पसीने पूंजदा, सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया। बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कारज आया रासे नानक कहो गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदों सतगुरु कारज करन आ जावे उसले कारजां च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ

साहेब सतगुरु गुरु कलगी धर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहेब पातशाह जी हजूरी विच सजके जदों तख्त चवर दे मालिक साहेब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाओ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उहदे नाल वर्तारा वरदा है, किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह दा इह हुक्म है सब सिखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। ते इह हुक्म कलगीधर दा सुन के ते उहदा कहाउण वाला कोई गुरु का सिख किसी देह दे अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया नहीं। ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करन वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में दे। ते जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है, ते बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जंगदीए साहब की बख्शिश है भी जदों गल्लां करोगे तुहाडी रसना ती आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी, ऐं कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, ये उत्तम है, ये प्रमाणिक है, ये ना प्रमाणिक है, तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए, जंगदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का एक करिश्मा है। ते जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है, ते राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुर सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। ते जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुनदा नहीं ते मैं समझां वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते, पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनने वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुनदा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदिरा कर्ण बख्शिया है, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है कि आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा। जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टंकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी विहार लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है, सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है, जिथे भी साध जन बैठ के उनु चेते करदे ने उथे।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani 24 hours a day from around the world.

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई सब कहते ने, मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

खत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पीव। ए रचना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रचना अमृत पीवो सदा सुहेला कर रे जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया है उन्हां नूं फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हाँ। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग। सत संगत च बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदतां हन संगतां हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगे। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

एतन होती खाक में मारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गौर करे आज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया आज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी।

व्यापारी मरना जो दिसे सो काले खरना जो दिसे सो काले खरना कबीरा तूर सकेल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विच्चों जाए

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत कांड सासा देता बिल मना करियो मीत।

चले चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंढेंदिया छे मार तोड़ेंदिया चिट्ठी नो जिमें

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोजे कह कबीर सुमरे प्राणी कह कबीर सुमरे प्राणी।

भजन हर हर गाई, हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज।

ने मथा टेकिया ना पिछों आके छोपले दे बामा फड़ ले। खलबली पै गई। साहब कहन लगे क्यों भाई ऐसा क्यों कर दे के महाराज नु पुछो ये सानू गाला कढ के गया सी। साहब कहन लगे माड़ी गल सुथरा जी गाला कढ़िया सन तुसा के महाराज कदों दी गल करदे के महाराज नु पुछो गाला कढ के नहीं गया। महाराज केड़िया गाला कदों दी गल करदे। महाराज हस पे कहन लगे क्यों भाई तुहानू पता है केड़िया गाला किस दिन दी गल करदे की गाला कढ़िया सी के महाराज संगत ते कहिंदे शर्म आउंदी बहुत गंदियां गाला कड़ियां सन। महाराज इन्हां नू पुछो किस दिन दी गल है क्यों भाई किस दिन दी गल है। साहिबां ने भी परता के पुछया किस दिन दी गल है। एक दूजे नाल वेखण लग पए कहण लगे महाराज दिन तां याद नहीं। कहण लगा महाराज चंगा इन्हां नू इह पुछो भी उस दिन कीर्तन होया सी की प्रकरण सी किस प्रकरण ते कीर्तन हो रहा सी मैं दसांगा किहड़ा दिन सी। इह सिर्फ इह दस दिन उस दिन कीर्तन किस मजमून ते हो रहा सी कीर्तन च शब्द का भाव की सी। बड़ा सोचिया कहने लगे जी ये तो याद नहीं। अच्छा महाराज इन्हों पुछो भी उस दिन तुसा की किया सी तुहाडे बचन तुसा भी तो विचार कथा बख्शिश की सी ना इन्हों पुछो भी उस दिन तुसा की बचन किए सन तुहाडे बचन दस दिन फिर मैं भी दस देंगा किदन की गल है। एक दूजे वाल वेखिया सोचिया कहने लगे जी ये भी याद नहीं आता तुसा की बचन उस दिन किए सन। बावा उचिया कीतियां झटका मार के उन्होंने खो के बावा उचिया कीतियां सुथरा जी कहन लगे महाराज जी ये मेरे सिख ने तुहाडे कोई। उन्होंने होर गुस्सा चढ़ गया कहन लगे महाराज देखो उस दिन तां गालां कढ़ियां अज तुहाडे सामने देखो किड्डी वधीकी पै करदा। कहिंदा मेरे सिख ने इस खलंडरे दे इस पतंदर दे असां सिख होणा ये की पै कहिंदा असीं तुहाडे सिख हां। कहन लगा महाराज मैं दावे नाल कहिंदा साबित करांगा ये मेरे सिख ने ना तुहाडी बाणी याद है इन्हां नूं ना तुहाडे बचन याद ने ना तुहाडी कथा याद है मेरियां गालां तुहानूं दसण नूं तैयार ने सारियां किहड़ियां किहड़ियां कढ़ियां सन मेरियां गालां चेते कीतियां ने तुहाडे बचन याद नहीं कीते। साहिब मुस्कुरा पए उन्हां नूं बड़ी शर्म आई वाकई सुथरे दियां गालां तां याद रख लईआं गुरु के बचन याद ना रखे क्योंकि चित गालां ते टिकिया होया कच्चियां पिलियां गल्लां ते चित टिकिया होया सी अजे बाणी ते चित टिकिया नहीं सी। शर्मिंदे हो किसी प्रेमी ने उठ के शिकायत की कहन लगे महाराज वेखो ना कुछ भी हो ठीक है इन्हां लोकां दी गलती है इन्हां ने गालां वल बहुता ध्यान कीता है पर सुथरा जी नूं भी इंज नहीं चाहिए बहुत सिरे चढ़ा रखिया तुसीं बहुत परेशान करदे किसी किसी वेले तां बहुता ही तंग करदे। साहिब कहन लगे देखो गल्लां सुथरा भी करदा तुसीं भी करदे असीं भी करदे सिरजनहार दीआं गल्लां असीं करने आ संसार दीआं गल्लां तुसीं करदे पर सुथरा जी गल करते ने वो इस करके करते ने कि झटका मार के जिवें किसी सुते नू जगाउणा हुंदा है जे तुहाडा बाणी वल ध्यान नहीं ते बाणी वल तुहाडा ध्यान दवाउण वास्ते सुथरा जी तुहानू एक झटका देंदे इहनू दुश्मनी ना समझो इहनू मित्रता समझो जिस गल दे नाल तुहाडे मन नू झटका लग के तुहाडा मन मोड़ा खा के गुरबाणी ते गुर बचना वल लगे वह सुथरे की गल ते वह हरकत जिहड़ी है माड़ी ना समझो वह तुहाडी मित्रता ही तुहाडे भले विच है। और कदे सोचिया होवे मेरा मन भी गुरबाणी वल जागे है कि नहीं सिरजनहार दीआं गल्लां वल जागे है कि नहीं इस भरपूर रस लैण वाले पासे मेरा मन तुरे है कि नहीं। साहिब पंचम पातशाह ने पुछिया सिखां ने कहन लगे महाराज देखो ना पंछी जागदे ने ते उह बोलदे ने पता लग जांदा है अपने आप ही पंछी जाग पैण रोशनी हुंदी है पता लग जांदा कि सूरज चढ़ पिया। हर एक शय दा जागना अपने आप च इक ऐलान लैके आउंदा है हर शायद जागर विच एक ऐलान है पता लगता है कि फलानी चीज जागी। ते महाराज मनुख कदों जागदा है ध्यान देना असी वैसे बिस्तरे चो जागने और जागना कुछ होर है साडे अंदर धर्म का जागना कुछ होर है। कहन लगे महाराज बंदे का जागना की है मनुख का जागना की है। ते साहिबां ने वचन किया साहब कहन लगे जिस दिन गुरु की बाणी मनुख नु मिठी लगन लग पवे ना समझ लेना बंदा जाग गया। जो मृद लाग गए गुर की बाणी मन जागन की यह है निशान समझो मन जाग पे है जिस दिन गुरु नानक की बाणी मिठी लगन लग पे। भाई साहब भाई संतोख सिंह के बचना च महाराज कहन लगे सिखो जिस दिन तुहाडे मन नु बाणी मिठी लगन लग पवे समझ लेना उस दिन मन जाग पे जिस दिन रस आना शुरू हो जाए और रस आवेगा ये गल वखरी है कि इस पासे का रस जरा हौली हौली शुरू होता है। आप तुखारी दे बारह माह च महाराज धन गुरु नानक पासे का बचन पढ़

असुन आओ पेरा साधन चूरम हुई प्यार दी बदी हुई बिरहन जेड़ी है वो चुरदी है कि किड़े वेले आके मिलाप दियां घड़ियां प्राप्त हो पर ओ चूरदी जेड़ी उतावली जेड़ी दूसरे पासे गुरमुख बिरती वाली वो कहंदी है ता मिली है प्रभ मेला है दूजे भाई सरकड़े खड़े हो जाएंगे तरह तरह के बूटे बेकार के पौधे खड़े हो जाएंगे और इसे भाव की एक साखी भी दसते ने कहते ने किसी महात्मा के डेरे के आले दुआले थां पई सी चेले नूं कह लगा देख बरसाता हो गई हटिया ने इत्थे कुछ ऐसे बूटे ला दे इस थां नूं साफ करके जंगल विचों पनीरी अपने आप उठी हुई है कुछ अंबा दे कुछ रसदार फलों के बूटे लिया के ला दे ताकि आने जाने वाले साधा की सेवा वास्ते तेन दूरों फल लैन ना जाना पे इतों ही फल लैके उन्होंने पेश कर दिया करांगे ते अपना भी काम चलता रहे सत बचन तो कह दिता पर मनिया कोई ना बहुत लोग ऐसे होंगे ने सत बचन तो कह देंगे अमल नहीं करते सत बचन कह दिता किया कुछ ना नतीजा होया बरसातों तो बाद उस धरती विचों बेकार के बूटे उठने शुरू हो गए का बाथू सरकड़ा कई कुछ उठिया वह सारी धरती जड़ी सी ना बेकार के बूटिया नाल भर गई सर्दी आई लंघ गई वह बूटे होर मजबूत होंदे चले गए गर्मी आई और सुक गए उन्होंने जड़ा अगलिया बरसात च होर कुछ नवा नवा फुट पिया महात्मा कह लगे काका तेनू कहा यह धरती साफ करके फलदार बूटे ला दे कह लगा जी बस थोड़ी जी ढिल हो गई तो फिर वेख्या खुला समा मंगते ने पटन पटाण कह लगे हुण भी कर लै नहीं तो इन्हों जड़ा होर गहरिया होंदिया जाणगियां तेरी मेहनत होर वधदी चली जाए औखा सौखा होके लग पिया लग्या थां साफ की जंगल विचों पनीरी लिया लिया के ला दी सर्दियों में उस पनीरी की रखिया की गर्मिया दिया तत्तियां लोहां तो उन्होंने बचाया अगलिया बरसात आ गई गोडी कर करके उन्होंने आले दुआले होर कोई घा बूट पैदा नहीं होने दिता उसने वो बूटे थोड़े थोड़े उठे ने कोई गोडे गोडे आ गए है कोई लख लख तक आ गया है कई अजे बहुत छोटे ने एक सर्दियां एक बहार एक गर्मी होर लंघ गई कुछ बूटे जो सन कुछ बूर ते आ गए किसी अजे कुछ भी नहीं लगा किसी बूर आ गए बड़ा प्रसन्न होया कह लगा महात्मा जी बूटिया बूर आ गया हूं फल लगेगा कह लगे बूर झाड़ दे क्यों कह लगे बूटे अजे बहुत छोटे ने इस फल च मिठास नहीं भरनी हुक्म मन के बूर झाड़ दिता एक वरा होर लग गया तीजे वरे जाके उन्होंने बूटिया चो बहुतिया फल लगे फल बड़े मिठे आए फल लिया के महात्मा ने पेश किए कह लगे लो थी आग्या अनुसार मेरी की मेहनत का फल थापड़ा दिता बड़े प्रसन्न हुए कह लगा महात्मा जी गल पुछनी दसो कह लगा वो जिहड़े घा सरकड़ा ते बेकार दे बूटे सन वो तो महीने में ही बंदे बंदे जिडे हो गए सन यह तीन साल मसा जाके फल देने जोगे हुए ने गल की उन्होंने बड़ी कीमती गल की कह लगे जिन्होंने रस देना होता हौली हौली फल दे जिन्होंने कंडे देने होंगे ने दिन चुटक लाते जिस रोटी ने अंदर जाके बीमार कर देना वो जबान से बड़ा स्वाद दें जिस सिमरन ने जीवन सवार देना वो हौली हौली स्वाद देता रस हौली हौली आएगा पर जिस दिन आ जाएगा ना वो सामने बाकी रस आन रसा सब हो छेरे बेकार हो जाए वो दृढ़ता वाला पक्का सदीवी टिकन वाला रस है पर आएगा हौली हौली आएगा सिरजनहार दियां गल्लां विचों आएगा जिन्हां चिर बेकार दियां गल्लां विच सिर ते भार पैण वालियां गल्लां विच लगे रहांगे उन्हां चिर इस रस दा आपां जरा जिन्ना अंश मात्र भी चख नहीं सकते साहब कहंदे ने मैं अपने दिमाग ते गल्लां दा बोझ पा रहे उल्टी बेसवादी खड़ी कर ली मैं गुण गल्लां कै सिर भार गली गल्लां सिरजनहार जे गल्लां दा ही रस लैणा ते सिरजनहार दियां गल्लां च बड़ा रस खाणा पीणा हसना बाल जिहड़े निक्के निक्के स्वाद बने होए ना यह सारे बेकार ने जब लग हृदय ना आवे याद जे वाहिगुरू चेते चली ना यह स्वाद बेस्वादी च बदल जाते हां तो परवाह के ही क्या कीजे जन्म जन्म किछ लीजी लीजे जिन्होंने इस जन्म का मकसद पूरा किया है भाव सिमरन किया है उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं कोई लेखा पुछन वाला नहीं हां जे टुटे हुए ने बेकार दियां गल्लां च बेकार दे रसां च पए ने मन की मत मन की मत पिछे लगे मतागल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने पता ही नहीं की कर रहे जो कुछ बोली है सब खतो खता जो गल करते ने गुनाह बन जाती फिर क्या मूल है कीचे अरदास पाप पुन दो साखी पास
जिंदगी च उन्हां दी अणहोंद ते पापां दी होंद यह अरदास करन जोगा मूंह भी तो नहीं रहन दिंदे। की मूंह लैके अरदास करांगे प्रभु दे दर अगे, बख्शे जाण दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रहेगा। क्या मूंह लैके चाहे अरदास पाप पुन दोए, साखी पास ते वसी भी दसी है, जैसा तू करे तैसा को होए, तुद बिन दूजा ना ही कोए, जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुद आपे भावे तिले चलावे। पर नाली प्रेरणा

तब कत मूंड लुकई है। हुण तेरा सोहना मुख है, सोहनी रसना कुदरत ने दिती है नाम जपन वास्ते, ते जे कदे तू पशु दी जून पै गया ते फेर पाई।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

पता नहीं से कि इस तरह परमेश्वर का सदा आ जाएगा। साहब जी कहते हैं इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे या कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा

देखद साल देखद मुहूर्त देखद काम इस महीने इस तारीख नू करना है इस वेले करना है ताकि सारिया नू बुला लवा किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम मुहूर्त ते कीता दिन देख के कीता साल देख के कीता पर मरन लगिया तू कोई मुहूर्त ना देखिया कोई तारीख ना देखी ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारिया नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू मुहूर्त दे कर सकदा है पर जड़ी मौत है ये मुहूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया पुछी थित ना वार मौत ने ना दिन देखन देता ना तरीक देखन देती ना कोई महीना देखन देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा पाला सारे परिवार नू मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस घरों ते तुर पिया। परिवार नू मिल के बड़ा खुश है पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना है। घर वाले कारू डीकते पए ने आ जाणगे शाम नू मेल हो जाएगा पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे आ हुक्म आ गया परमेश्वर दा आया हुक्म पार ब्रह्म का उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया। ना पत्नी दा ख्याल ना बच्चियां दा ना रिश्तेदारां दा ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नू मिल ही लवां नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ है जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नू मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ है आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

राज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

जदू किसे दा कोई प्यारा मर जावे असी कह देने हैं सबर करो जो होना सी हो गया हुकम सी परमेश्वर दा परसा संगत हुकम मनना कोई सौखा नहीं ये भी सच है एक दिन मरना है पर ये भी तां सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है इस दुख दा उन्हूं पता है जिदा कोई मरे क्योंकि गुरु साहिबां ने इस दर्द नूं समझिया अगर किसी औरत दा पति मर जाए मां दा पुत मर जाए उस दुख नूं गुरबाणी विच साहिब जी बयान करदे ने ओ मां जिदा पुत्र जिन्हों ने बड़े चा नाल पालिया कहिंदे ने हर मां बाप की इच्छा होंदी साडा पुत्र वड्डा होवे जदों असी मरीए ये सानू मोढ़ा देवे पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया ते उन्हां दा दुख की हो सकदा है कबीर साहब जी बयान करदे ने देहुरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है जिस पुत्र नु पालिया जानदा ता मेरा समा से उस पुत्र नु मरिया देखिया जिनु चार भरा आए चुक के लै तुरे एक पासे मां रो रही है दूसरे पासे लट छिटकाए तिरिया रोवे तिरिया औरत नु के एक पासे वाल खलार के औरत पई रोंदी है जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नु कौन समझ सकदा है साहिब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत भी पति नाल ही सौंदी है जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है साहिब जी

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते ने तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ

इस वास्ते के है कि मां बाप न्यामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना है।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ही चाहता है कि मैं किसी ना किसी ते हुक्म चलावां, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है, ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मूह नूं, मूह तूं ये भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है हुक्म आ जांदा है

सही महीनिया च बौरा कौन है, दीवाना कौन है? तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंद

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसी नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसी नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाऊ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जाता है तो या उसकी अवज्ञा होंदी है। अवज्ञा करने वाले नूं जो सजा होंदी है यह सारा संसार जानता। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मने जो उसका हशर हुंदा है जो उसका वर्तारा वरदा है किसी भी अग्ञानी तो अग्ञानी पुरश तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। तो यह हुक्म कलगीधर का सुन के तो वह कहाने वाला कोई गुरु का सिख किसी देह के अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया मिले। ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है जे बातां करनी है जे दीदार करना है तो बह जाओ हजूरी विच सज जाओ आके इशनान करके जल्दी साहब की बख्शिश है भी जो गल करोगे थोड़ी रसना ती आप ही बोल बोल तुम सुनाई जाऊगी ए कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर ए उत्तम है ए प्रमाणिक है ए ना प्रमाणिक है थोड़ी रसना ते बैठ के तुम समझाई जाओ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता है जेड़ा थोड़ी रसना वरत के आप ही तुम्हें कही जाए जल्दी बोलने वेले तुम ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का करिश्मा है ते जीने भी प्रभु नूं खोजना है ते इहदे विच समाया है। इह राह दसेगा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है। आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने इह बोलदा नहीं इह सुणदा नहीं ते मैं समझदा वी रब ने संसारक कन्न तां उहनां नूं दित्ते पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनन वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुन दा उन्हां नूं संसारक तौर ते तां इंदरा करन बख्शिया है पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन लई नहीं दित्ता। इस लई सब सिखन को हुक्म है की आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबिया तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा जे हरजस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टनकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे ने। सो साहिब दी बख्शिश है मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा करिश्मा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरत इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानूं उत्थे कम आ सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।

0: प्राणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ माचे धर्म अधूरे करमिया को अपनी के ने लेके दूर जिन्नी नाम आया गए मशक्कत का
1: सकत का